दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

संस्थाप्य अत्रिगोत्रस्य वेंकटेश प्रेत नमश्राद्धे अजन्ते क्षण उपतिष्ठतु अत्रिगोत्रस्य वेंकटेश प्रेत नमश्राद्धे विदन्ते पाद्यमुपतिष्ठतु अत्रिगोत्रस्य वेंकटेश प्रेत नमश्राद्धे आसन उपतिष्ठतु तिरान् प्रक्षिप्य अत्रिगोत्रस्य वेंकटेश प्रेत नमश्राद्धे।